0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

बुद्धिमान के मुख से निकलने वाले शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन पदों की व्याख्या कर बताया था कि किस प्रकार उपदेशक प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाकर अपने श्रोताओं और पाठकों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। मूर्ख व्यक्ति की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उपदेशक कहता है कि मूर्ख हर समय कुछ न कुछ बोला करता है, हालांकि उसके शब्दों में कोई तथ्य नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता। मूर्ख को भविष्य का कोई अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वह बेधड़क कुछ भी बोलता चला जाता है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि क्या बोल रहा है। यह भी नहीं कि उसके शब्दों से अनर्थ हो सकता है, वह दिशाहीन और लक्ष्यहीन होता है। वह खुद अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता और भटक जाता है, जबकि बुद्धिमान के शब्द प्रिय लगते हैं, क्योंकि उससे किसी का अहित नहीं होता, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। आगे प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाने के उपरांत उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 16वें और 17वें पदों में उत्तम राजा का उल्लेख कर उपदेशक कहता है, उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके सामंत प्रातः काल से ही दावत उड़ाते हैं। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके सामंत मतवाले बनने के लिए नहीं, बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते और पीते हैं। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित कराया था कि राजा के बच्चे होने से तात्पर्य केवल उसकी उम्र से नहीं है, बल्कि उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, अर्थात जो अनुभवी नहीं है, जिसका ज्ञान बच्चे के सदृश सीमित है, जिसे पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, जिसका दिमाग परिपक्व नहीं है, वही बच्चा है, भले ही उसकी उम्र जो भी हो। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए तो उस देश पर शोक छा जाएगा, क्योंकि उसके अधीन काम करने वाले यदि मक्कार हुए तो वे उसके अज्ञान का लाभ उठाएंगे और काम करने के बजाय भोग विलास में अपना सारा समय व्यर्थ ही गंवा देंगे। इसके विपरीत यदि राजा कुलीन है, कुशल है, ज्ञानी है और वफादार भी, तो वह देश का कार्यभार उत्तम रीत से संभाल सकेगा और प्रजा के हित में काम कर सकेगा। उसके अधीन काम करने वाले भी उसी की तरह सब समय सजग और सचेत रहेंगे तथा देश की रक्षा को तत्पर रहेंगे। वे मतवाले बनने के लिए नहीं पिएंगे, बल्कि उचित समय पर खाएंगे और पिएंगे, ताकि समय पर बल प्राप्त कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। श्रोताओं, स्वयं राजा सुलेमान जब राज गद्दी पर बैठा था तब उसकी भी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए उसने प्रभु ईश्वर से समझदारी और विवेक की प्रार्थना की थी। प्रभु के वरदान के फल स्वरूप ही सुलेमान को भला और बुरा पहचानने का विवेक मिला था और वह न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन कर सका।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंतिम पदों का पाठ कर इन्हें समझने का प्रयास करें। ये शब्द इस प्रकार हैं, यदि कोई आलसी है तो उसकी छत बैठ जाती है, यदि उसके हाथ सुस्त हैं तो घर में पानी चूता है। लोग मन बहलाने के लिए भोजन करते और अंगूरी जीवन को आनंदपूर्ण बनाती है, किंतु धन से हर समस्या का समाधान हो जाता है। आगे 20वें और अंतिम पद में उपदेशक कहता है, तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो और अपने शयन कक्ष में भी धनी को मत धिक्कारो, क्योंकि आकाश की कोई चिड़िया तुम्हारे शब्द उड़ा लेगी, कोई पंख

बारिश आने पर उसमें से पानी चूने लगता है और किसी को शरण प्रदान करने के लायक वह छत नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति आलसी तो हैं ही, लेकिन मतलबी भी हैं, क्योंकि केवल अपनी मनमानी कर जीना चाहते हैं। उन्हें अन्यों की परवाह नहीं होती। फिर एक बुरे और ना समझ राजा के दुर्गुणों का उल्लेख कर उपदेशक सुलेमान धन, भोजन और अंगूरी में जीवन यापन करने वाले शासकों को फटकार बताकर इस बात के प्रति सचेत करता है कि यदि यही उनका रवैया रहा तो शीघ्र ही वे अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। वे अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और देश का सम्मान खो देंगे। फिर भी वह अपने पाठकों और सुनने वालों को परामर्श देता है कि व्यक्ति भले ही अकेले में ही क्यों न हो, वह किसी भी परिस्थिति में अपने राजा, अपने शासक, अपने मालिक या नियोजक की बुराई नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने से राजा या प्रशासक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो बस राजा या प्रशासक के विरुद्ध बोलने वाले का। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप स्मरण दिलाते हैं कि कई बार कहा गया है कि राजाओं के कान लंबे होते हैं, अथवा दीवारों और बाड़ों के भी कान होते हैं। और एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया, ऐसी कहावत है जो कई संस्कृतियों में मिलती है, जिसमें एरिस्टोफेन्स की द बर्ड्स और प्राचीन हित्ती की राजधानी एल्कुहिरसा भी शामिल हैं। उपदेशक का परामर्श यही है कि किसी की बुराई मत करो। भले ही आप अकेले अपने शयन कक्ष में हों, तब भी आप किसी की बुराई न करें, क्योंकि यदि किसी प्रकार आपकी बात शासक या मालिक के कान तक पहुंच जाएगी तो इससे आप ही का अहित हो सकता है। श्रोताओं, ईश्वर के समक्ष भी हमारे गलत कामों के बारे में यही सच है। ईश्वर अंतर्यामी है, वे सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए मनुष्य सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा झूठ और गलत का नहीं, अपितु सदैव सत्य का साथ दे, सत्य के रास्ते पर चलता चला जाए।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 5 महादेशों से करीब 147 नवनियुक्त धर्माध्यक्ष वैटिकन प्रशिक्षण कोर्स में भाग ले रहे हैं, जिसमें मिशन, प्रेरितिक कार्य, सुरक्षा, धर्म विधि एवं कलीसिया के प्रशासन इत्यादि विषयों पर बात होंगी और इसका समापन पोप लियो 14वें के साथ मुलाकात से होगा। नवनियुक्त धर्माध्यक्षों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कोर्स 2 से 10 सितंबर तक रोम में आयोजित किया गया है। धर्माध्यक्षों के लिए वन विभाग और सुसमाचार प्रचार

लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित यह कोर्स नए धर्माध्यक्षों को प्रशिक्षण, प्रार्थना, बातचीत और भाईचारे का अनुभव करने का मौका देता है। साथ ही आज कलीसिया के सामने आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियों का हल करना सिखाता है। इस साल प्रशिक्षण कोर्स में कुल 147 धर्माध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इनमें से 98 धर्माध्यक्षों के लिए बने परमधाम पीठ विभाग द्वारा आयोजित कोर्स में शामिल हो रहे हैं, जिसका शीर्षक है मसीह में परिवर्तन के समय में मनीपिका ओमानितास के संरक्षक। जबकि 49 धर्माध्यक्ष सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग द्वारा आयोजित कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु है कलीसिया में सहभागिता के सेवक। इस कार्यक्रम में कई तरह के टॉपिक शामिल हैं, जैसे धर्माध्यक्षों की प्रेरिताएं, धर्म विधि, मिशन, सांस्कृतिक बदलाव, दुर्व्यवहार के मामलों को संभालना और उनकी सुरक्षा, कलीसिया का प्रशासन, कलीसियाई कानून, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत, नए धार्मिक आंदोलन, पुरोहितों का प्रशिक्षण और पुरोहितों के सामने आने वाली चुनौतियां। धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग का कोर्स 2 सितंबर को दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुष्ठान के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल आर्थर रोश के भाषण के साथ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम पोप लियो 14वें से मुलाकात के साथ समाप्त होगा, जिसमें प्रशिक्षण, प्रार्थना और भाईचारे के विषयों पर बात होगी, जो धर्माध्यक्ष प्रेरिताई की तैयारी के लिए अवसर होगा। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को इटली के मोलफेत्ता में पियूस 11वें रीजनल सेमिनरी और अवेरसा के धर्माध्यक्ष सेमिनरी के छात्रों से मुलाकात की और उनसे कहा कि सेमिनरी अनुभव का केंद्र बिंदु है गुरु येसु के साथ रहने सीखना। पोप लियो 14वें ने इटली के 2 सेमिनरी, पुलिया के मोलफेत्ता में पियूस 11वें रीजनल सेमिनरी और कंपानिया के अवेसा के धर्माध्यक्ष सेमिनरी के छात्रों को दिए अपने भाषण में येसु के साथ सेमिनरी के छात्रों के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित किया। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि पढ़ाई, अनुशासन और यात्रा के चरण प्रशिक्षण के जरूरी हिस्से हैं, लेकिन इसका आधार ईश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। संत मार्कुस रचित सुसमाचार पाठ के अनुसार 12 प्रेरितों के बारे चिंतन करते हुए पोप लियो ने सेमिनरी के अनुभव के बारे बताया, जिसकी शुरुआत येसु के साथ रहने के लिए पहाड़ पर चढ़ने से होती है। उन्होंने कहा, हम ख्रिस्त तक पहुंच सकते हैं और सबसे बढ़कर उनके साथ रह सकते हैं, जिसे पोप ने सेमिनरी अनुभव का केंद्र बिंदु बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रेरितों की तरह येसु लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रेरिताई के लिए बुलाते हैं। येसु ने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें वे चाहते थे, यानी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ पिता ईश्वर की इच्छा से, एक ऐसे प्रेम के चिन्ह और प्रतिज्ञा के द्वारा जो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं और कभी निराश नहीं करते। पोप ने पुरोहिताई की पढ़ाई कर रहे सेमिनरी छात्रों से कहा कि सेमिनरी में उनकी उपस्थिति ही पूरी कलीसिया के लिए उम्मीद की निशानी है। उन्होंने कहा, जब मैं आपको देखता हूं तो मैं ईश्वर के आश्चर्य के बारे में सोचता हूं, जो युवाओं के दिल में उनके और कलीसिया के लिए अपनी जान देने के सुसमाचार के बारे बतलाने से नहीं थकते। उन्होंने आगे कहा कि सेमिनरी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। साथ ही उन्होंने समुदाय की अहमियत पर जोर दिया, यह याद करते हुए कि येसु ने प्रेरितों को एक समुदाय के रूप में बुलाया था, जैसे आज सेमिनरी छात्रों को एक समुदाय में बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सेमिनरी छात्रों को प्रभु के साथ पूरी तरह से व्यक्तिगत यात्रा के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि उन्हें कलीसिया में हमेशा मध्यस्थता की सुंदरता को महसूस करना और अनुभव करना चाहिए। अंत में पोप लियो ने कहा, सेमिनरी के प्रशिक्षण में पहाड़ से नीचे आना भी शामिल है, क्योंकि पहाड़ कोई शरण नहीं है। प्रेरितों की तरह सेमिनरी छात्रों को भी दुनिया को जीवन की नई चीज बताने के लिए बुलाया जाता है, जिससे उन्होंने येसु में पाया है। उन्होंने कहा, इसलिए आपको पहाड़ से नीचे उतरने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि आपको अपने देश के लोगों के पास भेजा जा सके। पोप ने उन्हें खुद को मरियम को सुपुर्द करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें हर दिन येसु को हाँ कहने की कृपा मिल सके। संत पापा ने वक्तव्य के अंत में सेमिनरी छात्रों और उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद दिया। अरब क्षेत्र के लातिनी रीति के धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने कलीसिया से अपील की कि वह गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष एवं विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ रहना और उम्मीद रखना संभव है।
पोप लियो चौदहवें ने गुरुवार को अरब क्षेत्रों के लातिनी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के सदस्यों से मुलाकात की, जो रोम में अपनी वार्षिक मीटिंग में भाग ले रहे हैं। अपने भाषण में पोप ने माना कि बिशप एक बड़े और अलग अलग तरह के क्षेत्र में फैले स्थानीय कलीसियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और अक्सर ऐसे हालात में सेवा करते हैं जहां राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत की गवाही देखी है और उन कई पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों की ओर इशारा किया जिन्होंने इराक, सीरिया और दूसरे संघर्ष वाले देशों में विश्वास के लिए अपनी जान दे दी है। पोप लियो ने कहा, कलीसिया के नेताओं को अपने लोगों के करीब रहना चाहिए, उनकी बात सुनने और उन्हें दिलासा देकर उनके घावों को चंगा करने की कोशिश करना चाहिए। पोप लियो चौदहवें ने कोलंबिया के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की और देश में हाल ही में आए भूकंप के बाद अपनी एकजुटता दिखाई। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार पोप लियो चौदहवें ने बुधवार को कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति एबलार्दो दे ला एस्प्रेला से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान पोप ने 10 अगस्त को कोलंबिया में आए भयंकर भूकंप के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के प्रति अपनी करीबी जताई। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृत्यु का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कैसल्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु येसु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज माफ करें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बुधवार 26 अगस्त को चीन से लगी नेपाल की सीमा पर हिमनद टूटने और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 1290 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। त्रिशूली ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 9 दिनों तक फंसे रहने के बाद आज 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि अवरुद्ध सड़कों और राजमार्गों के कारण राहत व बचाव दलों के लिए सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ है। 65,000 लोगों को स्वच्छ पानी और साफ सफाई से जुड़ी आपात सहायता की जरूरत है। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें 252 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस आपदा का असर सीमा पार तिब्बत के इलाकों में भी पड़ा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अधिकारियों के अनुसार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भी बाढ़ का असर हुआ है, जहां लगभग 560 लोग लापता बताए गए हैं। माना जा रहा है कि हिमनद टूटने और भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ ने पूरी बस्तियों को तबाह कर दिया। नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में राहत दल कटे हुए इलाकों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याया ने बताया,
4: We have been provided with $2.5 million from the SURF, and I would like to.
3: हमें संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से $25 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। यूनिसेफ, WFP, UNFPA और WHO सहित सभी UN एजेंसियां सक्रिय हैं, आकलन कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में जा रही हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याया के शब्द। WHO ने संक्रामक बीमारियां फैलने के खतरे पर चेतावनी दी है। यूनिसेफ के अनुसार 18 स्कूल पूरी तरह तबाह हो गए हैं और स्कूल जाने की उम्र के लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता की जरूरत है।
2: मई के मध्य में प्रकोप शुरू होने के बाद से DR कोंगो के 6 प्रभावित प्रांतों में 5,600 से अधिक मामले और 2,700 मौतें दर्ज की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन फैलाव का रुझान अभी नहीं बदला है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय के अनुसार पड़ोसी बुरुंडी में रोकथाम के प्रयास शुरू हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुरुवार को कहा कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तेजी से फैल रहे बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप पर लगाम कसने के लिए तत्काल कार्यवाही और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कोंगो में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर सप्ताह लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि राहत प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि का केवल 48% ही उपलब्ध हो पाया है और मौजूदा संसाधन कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इबोला को काबू में करना, संक्रमण की कड़ी तोड़ना और लोगों की जान बचाना संभव है, लेकिन दुनिया को उदासीनता के वायरस से भी लड़ना होगा। पूर्वी डीआर कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं राहत प्रयासों में बाधा बन रही हैं। WHO और UN साझेदारों ने विशेषज्ञों, चिकित्सा सामग्री और सामुदायिक टीमों की तैनाती बढ़ाई है। बुरुंडी और दक्षिण सूडान में भी रोकथाम की तैयारियां तेज की जा रही हैं।
2: वर्ष 2017 में म्यांमार के राकिन प्रांत में सैन्य बलों की भीषण कार्रवाई से बचने के लिए सामूहिक विस्थापन का शिकार हुए रोहिंग्या समुदाय ने सुरक्षा की तलाश में बांग्लादेश का रुख किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय कई स्तरों पर ऐसी पीड़ा, दुर्दशा और क्रूरता झेल रहा है जो दिल दहला देने वाली है। म्यांमार में सेना और विभिन्न प्रतिरोधी गुटों के बीच भीषण गृह युद्ध जारी है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: UN की नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त 2017 में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। अधिकतर आज भी वहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद से सैन्य जुंटा कम से कम 8,075 लोगों की जान ले चुका है। सेना पर जबरन भर्ती, हवाई हमलों और मानवीय सहायता रोकने के भी आरोप हैं। वहीं राखीन प्रांत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली अराकान आर्मी पर भी रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हत्या, यातना, जमीन पर कब्जे और आवाजाही पर पाबंदियों के आरोप लगाए गए हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि रोहिंग्या लोग बढ़ती असुरक्षा, घटते संरक्षण और स्थायी समाधान की कम होती संभावनाओं का सामना कर रहे हैं।
2: नई दिल्ली स्थित UN हाउस में गुरुवार 27 अगस्त को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, नवाचार और एक टिकाऊ भविष्य विषय पर आयोजित चर्चा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय प्रबंधन, सिविल इंजीनियरिंग और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। अपनी भारत यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि यह आपकी दुनिया है और इसे आकार देने में आप कितनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI युवजन के सीखने, काम करने और फैसले लेने के तरीकों को पहले ही बदल रही है। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित UN हाउस में IIT के छात्रों के साथ बातचीत की। आमिना मोहम्मद ने कहा, ये चीजों को बड़े पैमाने पर बदलेगा। ये केवल एक अतिरिक्त तकनीक नहीं है, आज AI है, कल क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी और तकनीकें होंगी। ये आपकी पीढ़ी और आपकी दुनिया है। सवाल यह है कि इसे आकार देने में आपकी भूमिका कितनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद के शब्द। नई दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र देशीय टीम से भी मुलाकात की, जहां AI, टिकाऊ विकास और जलवायु कार्रवाई पर भारत UN सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के ओरियल कॉलेज को रॉयल चार्टर मिलने की 700वीं वर्षगांठ मनाने हेतु इटली पधारे प्रतिनिधियों का वेटिकन में स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल हेनरी न्यूमन के पद चिन्हों पर चलने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा ने कहा कि ओरियल का अवश्य ही एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिसने समय के लंबे अंतराल में कई परिवर्तन, घटनाएं और उथल पुथल भी देखी है, तथापि कॉलेज अपनी ख्रिस्तीय पहचान पर कायम रहा है। इसलिए आपकी वर्षगांठ पवित्र कुमारी मरियम को समर्पित कॉलेज के तौर पर इसकी कैथलिक शुरुआत का जश्न मनाने का एक सुंदर अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह पहचान ओरियल को सिर्फ एक अकादमिक संस्था ही नहीं बल्कि विश्वास और विद्वत्ता का एक यथार्थ समुदाय बनाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कॉलेज अपने अतीत के योगदानों को अपने भावी कार्यों के लिए एक सुनिश्चित नींव और मार्गदर्शक के तौर पर भरोसे के साथ देख सकता है। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि संत जॉन हेनरी न्यूमन विद्वत्ता के एक शानदार उदाहरण है, जिन्होंने न सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने जीवन में भी विश्वास और तर्कणा की अटूटता को दिखाया। उनके विचारों में बहुत सच्चाई थी, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास ईश्वर के साथ उनके निजी संबंध से जुड़ा था, जबकि उनकी विद्वत्ता अति उत्कृष्ट और साथ ही व्यावहारिक भी थी। संत पापा ने कहा कि संत जॉन न्यूमन के जीवन के दोनों पहलुओं की गहराइयों को सार्वभौमिक कलीसिया

की कि कलीसिया गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष और विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ मिलकर जीना और उम्मीद रखना मुमकिन है। गुरुवार को संत पापा लियो ने अरब प्रांतों के लैटिन कैथोलिक धर्माधीक्षित सम्मेलनों के सदस्यों से मुलाकात की जो रोम में अपनी वार्षिक बैठक कर रहे हैं। संत पापा ने इस बात को स्वीकार किया कि अरब के धर्माध्यक्ष एक वृहद और भिन्न भिन्न तरह के इलाके में फैली स्थानीय कलीसिया को मार्गदर्शन देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सेवा करते हैं जहां प्रायः राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव बने रहते हैं। इराक, सीरिया और अरब के अन्य संघर्षरत क्षेत्रों में अपना जीवन अर्पित करने वाले अनेकानेक पुरोहितों एवं धर्म समाजी स्त्री पुरुषों तथा लोकधर्मी विश्वासियों का स्मरण कर संत पापा ने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत के साक्ष्य को जाना है। उन्होंने कहा कि अपनी पल्लियों, स्कूलों और अस्पतालों में अपने काम के जरिए कलीसिया जरूरतमंद लोगों की बात सुनकर उनका स्वागत कर और उन्हें समर्थन प्रदान कर विशेषकर धर्म समाजों के कार्यों द्वारा सुसमाचार की सच्चाई को प्रसारित करती है। संत पापा ने धर्माधीक्षों से आग्रह किया कि आपातकालीन स्थितियों में वे कलीसिया के यथार्थ मिशन को न भुलाएं जो है सुसमाचार की उद्घोषणा, प्रार्थना, संस्कार और ख्रिस्तीय प्रशिक्षण। धर्माध्यक्षों से उन्होंने अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्रों के परिवारों और युवाओं पर वे विशेष ध्यान केंद्रित करें तथा उनकी कठिनाइयों और अनिश्चितताओं में उनकी मदद करें। संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार के उपरांत बुधवार को साल्ज़बर्ग यूथ ऑर्केस्ट्रा बेल्ला मूजिका ने वैटिकन के उद्यान के ऐतिहासिक वैटिकन रेडियो स्टूडियो में एक कॉन्सर्ट रिकॉर्ड किया जिसमें ऑस्ट्रिया के दो संगीत पंडितों द्वारा 250 वर्ष पूर्व रोम लाए गए दो मौलिक मोजार्ट वायलिनों का इस्तेमाल किया गया। साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा लियो ने मोजार्ट के दो मौलिक वायलिन में से एक डेला कोस्टा वायलिन को अपने हाथों में लिया जो वियना में उनके समय का मोजार्ट का कॉन्सर्ट वायलिन था। मोजार्ट न्यास इसे मोजार्ट के बाल्यकाल के वायलिन के साथ रोम ले आया था। मोजार्ट न्यास के निर्देशक लीनस कुम्पलर ने इस पल को एक स्वप्रेरित प्रतिक्रिया निरूपित किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे वाद्य यंत्र को संभालने में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, किंतु संत पापा लियो ने बड़ी सरलता से वायलिन को अपने हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि बेशक यह ऐतिहासिक संबंध हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है क्योंकि यह एक तरह से वोल्फगंग अमादेउस मोजार्ट की 250 से अधिक वर्षों के बाद रोम में घर वापसी है। गौरतलब है कि 1770 में 14 वर्ष की आयु में मोजार्ट ने अपने पिता लियोपोल्ड के साथ इटली की अपनी पहली यात्रा के दौरान संत पापा क्लेमेंट 14वें के समक्ष इस वायलिन को बजाया था। वैटिकन में गुरुवार को एक सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि टेक्नोलॉजी कला, संस्कृति और मानवीय मस्तिष्क को कैसे बदल रही है। इस बात पर चिंतन किया गया कि AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवता को मिलने वाले रचनात्मक उठाव को बुद्धिगम्य करने के लिए समझदारी की जरूरत है। दार्शनिक, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के संस्थापक दिमित्री वोल्कोफ कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कार की तरह है। यह बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने में मदद करती है, लेकिन जब हम एक अच्छी कार, खासकर रेसिंग कार बनाते हैं तो हमें उसे दीवारों से टकराने से बचाने के लिए बहुत प्रभावशाली और भरोसेमंद ब्रेक बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह सम्मेलन मंगलवार को रोमा त्रे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था जो बाद में वैटिकन के कसिनो पियो 4 भवन में जारी रखा और गुरुवार को समाप्त हो गया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के सह संस्थापक और दार्शनिक पियेत्रो परकोंती का मानना था कि आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी की बात करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैटिकन में संपन्न सम्मेलन में इस बात को समझने का प्रयास किया गया कि क्या मनुष्यों और कृत्रिम साथियों के बीच रिश्तों की कल्पना करना संभव है। उन्होंने बताया कि विचार विमर्श के दौरान संत पापा लियो के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास के संदेश पर ध्यान दिया गया जिसमें कहा गया है कि सब कुछ का केंद्र लोगों को बनाया जाए। यह केवल धार्मिक आवश्यकता ही नहीं है, यह एक मानवीय आवश्यकता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, बुधवार 26 अगस्त को चीन से लगी नेपाल की सीमा पर हिमनद टूटने और भूस्खलन से आई विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 1290 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। त्रिशूली ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 9 दिनों तक फंसे रहने के बाद आज 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि अवरुद्ध सड़कों और राजमार्गों के कारण राहत व बचाव दलों के लिए सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना हुआ है। 65,000 लोगों को स्वच्छ पानी और साफ सफाई से जुड़ी आपात सहायता की जरूरत है। अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें 252 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस आपदा का असर सीमा पार तिब्बत के इलाकों में भी पड़ा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अधिकारियों के अनुसार चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भी बाढ़ का असर हुआ है, जहां लगभग 560 लोग लापता बताए गए हैं। माना जा रहा है कि हिमनद टूटने और भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ ने पूरी बस्तियों को तबाह कर दिया। नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में राहत दल कटे हुए इलाकों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याहिया ने बताया,
4: We have been provided with $2.5 million from the SURF, and I would like to.
3: हमें संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से $25 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। यूनिसेफ, WFP, UNFPA और WHO सहित सभी UN एजेंसियां सक्रिय हैं, आकलन कर रही हैं और प्रभावित इलाकों में जा रही हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीला पीटर्स याहिया के शब्द। WHO ने संक्रामक बीमारियां फैलने के खतरे पर चेतावनी दी है। यूनिसेफ के अनुसार 18 स्कूल पूरी तरह तबाह हो गए हैं और स्कूल

0: जाने की उम्र के लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता की जरूरत है।
1: मई के मध्य में प्रकोप शुरू होने के बाद से डीआर कोंगो के 6 प्रभावित प्रांतों में 5,600 से अधिक मामले और 2,700 मौतें दर्ज की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन फैलाव का रुझान अभी नहीं बदला है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय के अनुसार पड़ोसी बुरुंडी में रोकथाम के प्रयास शुरू हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुरुवार को कहा कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तेजी से फैल रहे बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप पर लगाम कसने के लिए तत्काल कार्यवाही और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: डीआर कोंगो में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर सप्ताह लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि राहत प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि का केवल 48% ही उपलब्ध हो पाया है और मौजूदा संसाधन कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इबोला को काबू में करना, संक्रमण की कड़ी तोड़ना और लोगों की जान बचाना संभव है, लेकिन दुनिया को उदासीनता के वायरस से भी लड़ना होगा। पूर्वी डीआर कोंगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं राहत प्रयासों में बाधा बन रही हैं। WHO और UN साझेदारों ने विशेषज्ञों, चिकित्सा सामग्री और सामुदायिक टीमों की तैनाती बढ़ाई है। बुरुंडी और दक्षिण सूडान में भी रोकथाम की तैयारियां तेज की जा रही हैं।
1: वर्ष 2017 में म्यांमार के राकिन प्रांत में सैन्य बलों की भीषण कार्रवाई से बचने के लिए सामूहिक विस्थापन का शिकार हुए रोहिंग्या समुदाय ने सुरक्षा की तलाश में बांग्लादेश का रुख किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय कई स्तरों पर ऐसी पीड़ा, दुर्दशा और क्रूरता झेल रहा है जो दिल दहला देने वाली है। म्यांमार में सेना और विभिन्न प्रतिरोधी गुटों के बीच भीषण गृह युद्ध जारी है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: UN की नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त 2017 में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। अधिकतर आज भी वहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद से सैन्य जुंटा कम से कम 8,075 लोगों की जान ले चुका है। सेना पर जबरन भर्ती, हवाई हमलों और मानवीय सहायता रोकने के भी आरोप हैं। वहीं राखीन प्रांत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली अराकान आर्मी पर भी रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हत्या, यातना, जमीन पर कब्जे और आवाजाही पर पाबंदियों के आरोप लगाए गए हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि रोहिंग्या लोग बढ़ती असुरक्षा, घटते संरक्षण और स्थायी समाधान की कम होती संभावनाओं का सामना कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली स्थित UN हाउस में गुरुवार 27 अगस्त को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, नवाचार और एक टिकाऊ भविष्य विषय पर आयोजित चर्चा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय प्रबंधन, सिविल इंजीनियरिंग और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। अपनी भारत यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि यह आपकी दुनिया है और इसे आकार देने में आप कितनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
0: संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI युवजन के सीखने, काम करने और फैसले लेने के तरीकों को पहले ही बदल रही है। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित UN हाउस में IIT के छात्रों के साथ बातचीत की। आमिना मोहम्मद ने कहा,
2: will change things dramatically. This is not just add on. Let's have technology.
0: ये चीजों को बड़े पैमाने पर बदलेगा। ये केवल एक अतिरिक्त तकनीक नहीं है। आज AI है, कल क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी और तकनीकें होंगी। ये आपकी पीढ़ी और आपकी दुनिया है। सवाल यह है कि इसे आकार देने में आपकी भूमिका कितनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद के शब्द। नई दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र देशीय टीम से भी मुलाकात की, जहां AI, टिकाऊ विकास और जलवायु कार्रवाई पर भारत UN सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के ओरियल कॉलेज को रॉयल चार्टर मिलने की 700वीं वर्षगांठ मनाने हेतु इटली पधारे प्रतिनिधियों का वेटिकन में स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल हेनरी न्यूमन के पद चिन्हों पर चलने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा ने कहा कि ओरियल का अवश्य ही एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिसने समय के लंबे अंतराल में कई परिवर्तन, घटनाएं और उथल पुथल भी देखी है, तथापि कॉलेज अपनी ख्रिस्तीय पहचान पर कायम रहा है। इसलिए आपकी वर्षगांठ पवित्र कुमारी मरियम को समर्पित कॉलेज के तौर पर इसकी कैथलिक शुरुआत का जश्न मनाने का एक सुंदर अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह पहचान ओरियल को सिर्फ एक अकादमिक संस्था ही नहीं बल्कि विश्वास और विद्वत्ता का एक यथार्थ समुदाय बनाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कॉलेज अपने अतीत के योगदानों को अपने भावी कार्यों के लिए एक सुनिश्चित नींव और मार्गदर्शक के तौर पर भरोसे के साथ देख सकता है। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि संत जॉन हेनरी न्यूमन विद्वत्ता के एक शानदार उदाहरण है, जिन्होंने न सिर्फ अपने कामों में बल्कि अपने जीवन में भी विश्वास और तर्कणा की अटूटता को दिखाया। उनके विचारों में बहुत सच्चाई थी, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास ईश्वर के साथ उनके निजी संबंध से जुड़ा था, जबकि उनकी विद्वत्ता अति उत्कृष्ट और साथ ही व्यावहारिक भी थी। संत पापा ने कहा कि संत जॉन न्यूमन के जीवन के दोनों पहलुओं की गहराइयों को सार्वभौमिक कलीसिया के आचार्य और कलीसिया के शैक्षणिक मिशन के सह संरक्षक रूप में कलीसिया की घोषणा में पहचाना गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जगत की चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा संबंधी संत न्यूमन के वैयक्तिक सुविचार अति सुसंगत हैं, इसलिए कि वे ऐसे प्रशिक्षण का प्रस्ताव करते हैं जो अखंड मानव विकास का आलिंगन करती तथा शिक्षा की कीमत मानव सम्मान, न्याय और सर्व जन कल्याण की क्षमता के अनुकूल नापती है। ओरियल कॉलेज के प्रतिनिधियों को संत पापा ने प्रोत्साहन दिया कि वे साहसपूर्वक सदैव सत्य की खोज में लगे रहें और इस अभिन्न मानवीय शास्त्र दृष्टि को बढ़ावा देते रहें। अरब प्रांतों के लातीनी रीति के कैथलिक धर्माध्यक्षों से मुलाकात के अवसर पर संत पापा लियो 14वें ने अपील की कि कलीसिया गरीबों के प्रति एकजुटता के साथ संघर्ष और विभाजन का सामना करे और इस बात का साक्ष्य दे कि साथ मिलकर जीना और उम्मीद रखना मुमकिन है। गुरुवार को संत पापा लियो ने अरब प्रांतों के लैटिन कैथलिक धर्माधीक्षित सम्मेलनों के सदस्यों से मुलाकात की, जो रोम में अपनी वार्षिक बैठक कर रहे हैं। संत पापा ने इस बात को स्वीकार किया कि अरब के धर्माध्यक्ष एक वृहद और भिन्न भिन्न तरह के इलाके में फैली स्थानीय कलीसिया को मार्गदर्शन देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सेवा करते हैं जहाँ प्रायः राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव बने रहते हैं। इराक, सीरिया और अरब के अन्य संघर्षरत क्षेत्रों में अपना जीवन अर्पित करने वाले अनेकानेक पुरोहितों एवं धर्म समाजी स्त्री पुरुषों तथा लोकधर्मी विश्वासियों का स्मरण कर संत पापा ने कहा कि इन कलीसियाओं ने शहादत के साक्ष्य को जाना है। उन्होंने कहा कि अपनी पल्लियों, स्कूलों और अस्पतालों में अपने काम के जरिए कलीसिया जरूरतमंद लोगों की बात सुनकर उनका स्वागत कर और उन्हें समर्थन प्रदान कर विशेषकर धर्म समाजों के कार्यों द्वारा सुसमाचार की सच्चाई को प्रसारित करती है। संत पापा ने धर्माध्यक्षों से आग्रह किया कि आपातकालीन स्थितियों में वे कलीसिया के यथार्थ मिशन को न भुलाएं, जो है सुसमाचार की उद्घोषणा, प्रार्थना, संस्कार और ख्रिस्तीय प्रशिक्षण। धर्माध्यक्षों से उन्होंने अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्रों के परिवारों और युवाओं पर वे विशेष ध्यान केंद्रित करें तथा उनकी कठिनाइयों और अनिश्चितताओं में उनकी मदद करें। संत पापा लियो 14वें से साक्षात्कार के उपरांत बुधवार को साल्ज़बर्ग यूथ ऑर्केस्ट्रा बेल्ला मूजिका ने वैटिकन के उद्यान के ऐतिहासिक वैटिकन रेडियो स्टूडियो में एक कॉन्सर्ट रिकॉर्ड किया, जिसमें ऑस्ट्रिया के दो संगीत पंडितों द्वारा 250 वर्ष पूर्व रोम लाए गए दो मौलिक मोजार्ट वायलिनों का इस्तेमाल किया गया। साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा लियो ने मोजार्ट के दो मौलिक वायलिन में से एक डेला कोस्टा वायलिन को अपने हाथों में लिया, जो वियना में उनके समय का मोजार्ट का कॉन्सर्ट वायलिन था। मोजार्ट न्यास इसे मोजार्ट के बाल्यकाल के वायलिन के साथ रोम ले आया था।
मोजार्ट न्यास के निर्देशक लीनस कुम्पलर ने इस पल को एक स्वप्रेरित प्रतिक्रिया निरूपित किया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे वाद्य यंत्र को संभालने में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, किंतु संत पापा लियो ने बड़ी सरलता से वायलिन को अपने हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि बेशक यह ऐतिहासिक संबंध हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि यह एक तरह से वोल्फगंग अमादेउस मोजार्ट की 250 से अधिक वर्षों के बाद रोम में घर वापसी है। गौरतलब है कि 1770 में 14 वर्ष की आयु में मोजार्ट ने अपने पिता लियोपोल्ड के साथ इटली की अपनी पहली यात्रा के दौरान संत पापा क्लेमेंट 14वें के समक्ष इस वायलिन को बजाया था। वैटिकन में गुरुवार को एक सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि टेक्नोलॉजी कला, संस्कृति और मानवीय मस्तिष्क को कैसे बदल रही है। इस बात पर चिंतन किया गया कि AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवता को मिलने वाले रचनात्मक उठाव को बुद्धिगम्य करने के लिए समझदारी की जरूरत है। दार्शनिक, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेनर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के संस्थापक दिमित्री वोल्कोव कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कार की तरह है। यह बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने में मदद करती है, लेकिन जब हम एक अच्छी कार, खासकर रेसिंग कार बनाते हैं, तो हमें उसे दीवारों से टकराने से बचाने के लिए बहुत प्रभावशाली और भरोसेमंद ब्रेक बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह सम्मेलन मंगलवार को रोमा त्रे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, जो बाद में वैटिकन के कसिनो पियो चौथे भवन में जारी रखा और गुरुवार को समाप्त हो गया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज के सह संस्थापक और दार्शनिक पियेत्रो परकोंती का मानना था कि आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी की बात करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैटिकन में संपन्न सम्मेलन में इस बात को समझने का प्रयास किया गया कि क्या मनुष्यों और कृत्रिम साथियों के बीच रिश्तों की कल्पना करना संभव है। उन्होंने बताया कि विचार विमर्श के दौरान संत पापा लियो के विश्व पत्र मनीफिका उमानितास के संदेश पर ध्यान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ का केंद्र लोगों को बनाया जाए। यह केवल धार्मिक आवश्यकता ही नहीं है, यह एक मानवीय आवश्यकता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।